पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा

किया। पंक जो मोह पग नहीं चलै, हम देखा तह डूबी रही। मन एक न चित समूढ़ बनाओ, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हूँ जती सती नहीं पड़या,

कहो पै को कह जाओ पै। संबत 1755 अर्ध सहस पुण तीन कह जाए भाद्रव सुदी अष्टमी रबारा तीरुस्तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पख्याने तिरे चरित्र मंत्री भूप संवादे 400 समापत मस्त शुभ मस्त अपजू दोहरा।

थारा दास जान दे हाथो बारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम धरो भगवत को ध्यान बहुर करो कविता बेद नाना कृष्ण जथा मत चरित्र चारु चूक होए कबले हो सुधारु कबे बाचो दोहरा जो निज ब्रह्म सो कहां सो कहूं जग माहि जो ते प्रभु को त्याए है अंत स्वरूप को जाहि दोहरा हर हर जन दोई एक है बेविचार कछ नाही जल ते उपज तरंग जो जल ही विकास माहि दोहरा

आदमी अछब सके न कोई। सम्मत 1750 हाड़बदी प्रथम सुख दबनऊ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहल्यो सुधारा दोहरा।

ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सोइया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहें हम एक न जानियो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

सुख जाय। ओ वैसे कतक समुदी मेरा सब पर सब शक्ति है, तुद टिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है।

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहे पर पूरे बिरवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अरहद तूरे।

सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो देखा लाख करोड़ सच्चा सब कान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्ची।

जेहे माया ममता तजी सब ते भयो उदास कहो नानक सुन रे मना तेह घट ब्रह्म।

कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तेह जान। हर जन हर

कहो नानक हर भजन बिना परत ताहे जम फंदा। सुख मैं बहु संगी पाए दुख मैं संग न कोए। कहो नानक हर भज मना अंत साई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रासो। कहो नानक हर भज मना

जगत पे खारी फिरता है सबको दाता रामा, कहो नानक मन सिमरते है पूरन हो वह कामा।

हस्तमेघराघवगाव पंचौ संग बरंगन लाव सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गाव आशा गुनगुनी

कथ न कथि नावै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक बिगसै वे परवाहो। साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार। आखह मंगह देहे देहे, दात करे दातार। फेर के अगै रखी है, जित दिसै दरबार।

कोट कथ कथ कथि कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक बिगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपा।

रंग प्रंग अनेकना जापन करत बा जी आंदर जियो सब जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा घर बला तेरे कर नंद वदाई तुद घर मान मत।

0: एक पीना दे दस पीहर ले ठाकर से ना ही चारा
1: जाका
0: मन लागा बा मीठा
1: सर्व सुख ताहू मन उठा
0: जज अपना हुक्म नाया
1: सर्व नानक दिन पाया
0: अगा साहो अपनी दे रास अपनी मन कस बहुत सवाल
1: अज्ञानी मन रोष करे
0: अपनी बरती रा भी खोवे
1: बहुत उसका विश्वास ना होवे
0: जिसकी बात सरागे रखे
1: रब की आज्ञा माने माथे
0: ओते जोगन करे निहाल
1: अनक साहिब सदा दयाल
0: अनक पात माया के हेत
1: सर पर होत जान अनेत
0: मेर की साया सेव रंग लावे
1: ओ बिनसे ओ मन पछतावे
0: जो दिसे सो चालन हार
1: लेफ्ट रेओ तो अंध अंधार
0: उठाओ समझो लावे ने
1: ताको हाथ न आवे के हे
0: मन हर के नाम की उरी सुखदाई
2: कर के पानान आप ले लाई
0: मिथ्या तन तन कड़ा बसवाया
1: मिथ्या होमे ममता माया
0: मिथ्या राज जोवन तन मालो
1: मिथ्या का
0: मिथ्या रात हाथी सब वस्त्रा
1: मिथ्या राग संग माया ते खस्ता
0: मिथ्या त्रो मोह मान
1: मिथ्या आप ऊपर कत गुमान
0: अस्त्र पाद साध की सरना
1: नानक जप जप जीव हर के चरना
0: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने
1: मिथ्या हास पर दर्द कर दे
0: मिथ्या नेत्र पेश पत्र पांद
1: मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद
0: मिथ्या चन पर बकार को तावे
1: मिथ्या मन पर
0: मिथ्या तन पर बकारा बन बूझे मिथ्या सब पे
1: नाम ले
0: व्यर्थी साध की आर जा व्यर्था ना बिना तनो अंग बिन सिमर दिन रहन व्यर्था वे आए
1: बिना जो खेती जाए
0: गोन बन व्यर्थे सब काम
1: दाम
0: तन तन ते जन जाए कटवस्यो हर नाओ रहत और कुछ और कमाव तो जानन हार प्रभु प्रवीण आवर अवदेश आव ना करे
1: आप जावत जन्मे मरे
0: जिसके अंतर वसे नंकार
1: जिसकी सेख तरे संसार
0: जो तो बने तेन प्रभु जाता
1: नानक उंजन चन प्राता
0: करो बेनती बाप सब सब जाने
1: अपना किया आपे माने
0: आपे आप आव करत नवेरा
1: किसे दूर जनाव किसे बुझात नेरा
0: अपाव सब सयान सगल ते रहे तो
1: सब किस जाने आत्म की रहते
0: पावे ते लाए
1: खान सुनंतर रिहा

0: पड़ी।
1: यह बरसात सत्य अमृत खा है,
0: यह
1: बरसात सुगंध अतन लावे, यह बरसात बसे सुख मंदर,
0: यह
1: बरसात ग्रह सुख बसना,
0: आठ पहर सिमर हो ते सिरसना,
1: यह बरसात रंग रस भोग,
0: नानक सरत आइए ते अवन जोग,
1: यह बरसात पाठ पठन भंडावे,
2: इसे त्याग कर धर्म प्रभावे,
1: यह बरसात सुख सुरेसी जय,
0: मान आठ पहर
1: ये बरसात तो सब को माने,
2: जस रसन बखाने,
1: ये बरसात तेरो रहता धर्म,
2: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म,
1: राव जी जत दर के मन पावा,
0: नानक पास से तीर का जावे,
1: ये बरसात रोग कंचन देही,
2: देव लाओ इस राम
1: सुनेही, ये बरसात तेरा उल्ला रहतो,
0: मन सुख पावे है हर हर जस कहतो,
1: ये बरसात तेरे सगल सिंदर टाके,
2: मन सरे ने पर
1: ये बरसात तुझ को ना पहुंचे,
0: मन सास सास से मैं हो प्रभुचे,
1: ये बरसात पाई दिलाव दे,
0: नानक ता की भगत करे,
1: ये बरसात भूकंप हरी जय,
2: मन तिस से मैं हर के जय,
1: ये बरसात असवा हस सवारी,
2: मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी,
1: ये बरसात बाल मिलक तना,
2: राख प्रभु प्रभु अपने मना,
1: तेरी मन मंत बनाई,
2: उठट बैठ सत से ते आई,
1: ते

0: परम गतभावे
1: जे प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो
1: गुरु प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू पर को संसार
1: इस प्राप्त को मन न मनो विसार
0: हे

0: सुन मीता नानक बिन बंदा साध जना की अचरज कथा अस्पदी
1: साध के संग मकूजल हो तो
2: साध मल सगली कोट
1: साध के संग मिटे मान
2: साध के संग
1: प्रगट के साध के संग नेरा
2: साध संग होत निवेरा
1: साध के संग पाए नाम रतन
2: साध के संग ऊपर जतन
1: साध की महिमा बने कौन पुरानी
0: नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी
1: साध के संग उच्चर मिले
2: साध के संग सदा पर फुले
1: साध के संग आवे बस पांचा
3: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की रेन
2: साध के संग मनोहर बैन
1: साध के संग न कतु तावे
3: साध संग स्थिति मन पावे
1: साध के संग माया ते बैन
3: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सा मीत
2: साध के संग महापुरीत
1: साध संग कैसे नहीं वैर
3: साध के संग न मीका बैर
1: साध है ना ही को मंदा
3: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग ना ही होता वो
3: साध के संग तेरे सब आप
1: आपे जाने साध बढ़ाई
2: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग ना कबूत आवे
2: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग वास्तव गोचर लहे
2: साधु के संग अजर सहे
1: साध के संग बसे साध हम बसे सन उच्चे
2: साध के संग
1: दृढ़ सब धर्म
2: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान
2: नानक साधु के कुर्बान
1: साध के संग सब कुल उधारे
2: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे
1: साधु के संग सो तन पावे
2: जिस तन ते सब को बरसावे
1: साध संग तारु राय करे सेवा
2: साध के संग सो बासुर देवा
1: साधु के संग पाप लैन
2: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध के संग सर्व थान गम
2: नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कुछ काल
2: दर्शन पेट तो होत निहाल
1: साध के संग कुलुक धरे
2: साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग यहाँ सेला
2: साध संग बिशरत हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे
2: साध के संग ना बिरथा जावे
1: पाप रहम साध रत बसे
2: नानक उतरे साध सुन रस है
1: साध के संग सो हर नाओ
2: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग ना मन ते बिसरे
2: साध संग सर पर निस्तर

0: ब्रह्म ज्ञानी का होए सो भला
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल आधार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के पसे प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सरस जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
0: ब्रह्म ज्ञानी का हुए जंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस भागी पाइया
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथन जाय अखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सा सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सा जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मौत जग जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सा ऊपर हाथ

0: मिथ्या नाही रसना परसा
1: मन में प्रीत निरंजन दर्श
0: हरत्र रूप न पेखे नेत्र
1: साखी टहर संत संग हेतर
0: न सुने काहू की निंदा
1: सत्य जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद बिखिया पर हरे
1: मन की वासना मानते तरे
0: इंद्री जित पांच दोग ते रहता
1: नानक कोट में देखो ऐसा परस
0: वैष्णो सो जैसो पर सो प्रसन्न
1: विषन की माया ते होए पिन
0: कर्म करत होवे न कर्म
1: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: आहू फल की इच्छा नहीं बचे
1: केवल भगत

0: भक्ति भगवंत भगत का रंग मनते बेंसे सगला भरम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: सा संग पापा मल खोवे
1: तिस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत
1: मंतन अर्पे विसन परीत
0: हर के चन हृदय सावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: ओ मंडल जो मन प्रबोधे
1: राम नाम
0: राम नाम सार रस पीवे
1: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हरदेव सावे
1: सो पंडित फिर जोन न आवे
0: वेद प्राण सिमरत बूझे मूल
1: सुखम में जाने स्थूल
0: चौ वर्णा कहो देव देश
1: नानक उस पंडित

0: कई कोट पर दर कहरे,
1: कई कोट पर दुख ना करे,
0: कई कोट माया शर्मा है,
1: कई कोट पर देश कमाए,
0: जेते लावो तेते लगना,
1: नानक करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
1: कई कोट राजे रस भोगी,
0: कई कोट पांखी सर्व पाए,
1: कई कोट पाथर भिरख निप जाए,
0: कई कोट पवन पाणी वै संतरा,
1: कई कोट देश भू मंडल,
0: कई कोट सस्य सून खतरा,
1: कई कोट
0: छत्र समग्री अपने सो तारे,
1: नानक जी जिस पावे तिस तिस निस्तारे,
0: कई कोट राज ताम सातक,
1: कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र,
0: कई कोट किए रतन समंदा,
1: कई कोट नाना प्रकार जंत,
0: कई कोट किए चिर जीव,
1: कई कोट गिरि मेर सुवरन थीवे,
0: कई कोट जग साच,
1: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच,
0: आवते नेड़े सबूते दूर,
1: नानक आप परपूर,
0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नरक सुरग निवासी,
0: कई कोट जन्म जीव मरे,
1: कई कोट जोनी फिरे,
0: कई कोट बैठी खाए,
1: कई कोट काले थक पाए,
0: कई कोट किए तनवानता,
1: कई कोट माया में चिंता,
0: जय जय पाना तै तै रखे,
1: नानक सब किस प्रभु के हाथे,
0: कई कोट पाए वैरागी,
1: राम नाम संग तिन लिव लागी,
0: कई कोट प्रभु को खो जानते,
1: मातम में पार ब्रह्म लहंते,
0: कई कोट दर्शन का प्यास,
1: इनको मिले प्रभु विनाश,
0: कई कोट मांगे सत्संग,
1: पार ब्रह्म तिन लागा रंग,
0: जिनको हुए आ

0: नानक दृष्टि वरना आवे
1: ओ मनुख ते क्या हुए आवे
0: जो तिस पावे सोई करावे
1: उसके हाथ होए ता सब कुछ ले
0: जो तिस पावे सोई करे
1: अनजान विख्या मैं रचे
0: जे जान दे अपने आप बचे
1: पर मैं पूला दे दस्तावे
0: निमक माए चार कुंड फिरे आवे
1: हर कृपा जस अपनी भक्ति।

0: का साजा।
1: कबू अकीर्त में ऐ कहावे,
0: कबू पला पला कहावे,
1: नभव राखे ते भी रहे,
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे।
1: कबू होए पंडित करे बखान,
0: कबू मोहन कारी लावे ध्यान,
1: कबू तट तीर्थ स्नान,
0: कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कबू कीट हस्तांग होए जिया,
0: अनित जोन पर मैं पर मिया,
1: नाना रोजन स्वागी दिखावे,
0: जो प्रभ पावे तिवे न चावे,
1: जो तुत पावे सोई होए,
0: नानक दूजा और न कोए,
1: कबू सा संग त्यो पावे,
0: उस सा संग

0: सर्वाधिपति
1: जिसके अंतर्राजमान
0: जो
1: जन में जो वन जनता आस को कर्मत कहावे भूमिका जो करे गमान
0: ज्ञान
1: कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: सुखता
1: हुए कर गर्भावे
0: समान कर संग ना जावे
1: और लश्कर मनुख ऊपर करे आसो।

0: पदे
1: संत के दुखन हार जाकट है
0: संत के दुखन चंते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा से हीन
1: संत के रहते को रखे ना कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल करे कृपा करे
0: संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरे
1: संत के दुखन ते मोह पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए
1: संतन के दुखन तिसना मै जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन ते सब जाए
0: संत के दुखन नीच ने जाए
1: संत दुखी का थाओ को नाहे
0: नानक संत पावे होए मीकत पाए
1: संत का दुखी संत का निंदक मात आई
0: संत का निंदक गिनती न पाई
1: संत का निंदक महा त्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मा

0: जगह दुखी सदा से कहिया
1: संत
0: के दुखी की पूजे ना आसा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख न टेस्टे कोए
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: क्या कीर्तना मिटे कोए
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: आओ करते क्यों करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: आओ की उत्तर करो दिन रात
1: जिसे ते आओ सास गया से
0: आओ कर वास्ते तिसका किया
1: जैसा करे तैसा

0: अनोखी टेक वृत्ति सब जानो
1: देव न कोई के भगवान
0: जिसके दिए रहे अगाए
1: भवन कृष्णा लागे आए
0: मारे रखे एको आप
1: मान के कृष्णा ही हाथ
0: जिसका हुक्म भू सुख होए
1: इसका नाम रख कंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
1: नानक बिगन न लागे कोए
0: उस्तत मन में कर निरंकार
1: कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो नैनो पेख ठाकर कारंग
1: सत्संग मिंदे सब संग
0: चल चलो मार्ग गोविंद
1: मेरे बाप जपिए हर बिंद
0: कर हर कर्म श्रवण हर कथा
1: हर दर्गे नानक उज्जल मथा।

0: सोदत सोदत सोदत सीजिया
1: गुरु प्रसाद तक सब बुझिया
0: जब देखो तब सब किस मूल
1: नानक सो सुखम सोई अस्थूल
0: नह किस जन्मे नह किस मरे
1: अपन चारा आप ही करे
0: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट
1: आज्ञाकारी दारी सब श्रेष्ठ
0: आपे आप सगल में आप
1: अनेक जुगत रस्ताप उथाप
0: नासी नाही किश खंड
1: तारन तारे ओ ब्रह्मंड
0: अलख अपे पुरख प्रताप
1: आप जपाए द नानक जाप
0: इन प्रभु जाता सो सो बावंत
1: सगल संसार रुद्रे तिन मंत
0: प्रभु के सेवक सगल उदारन
1: प्रभु के सेवक दुख विसारन
0: अपे मेल ले कृपाल
1: सब जपे निहाल
0: उनकी सेवा सोई लागे
1: जिसन कृपा करे बड़ पागे
0: नाम जत पावे विश्राम
1: नानक तिन पुरख उत्तम कर मान
0: जो कछु करे सु प्रभ कह रंग
1: सदा सदा बसे हर संग
0: सहज सुभाए होए सो होए
1: करने हर पछाने सोए
0: प्रभ का किया जन मीठ लगा

0: सदा हर जाप
1: अपन
0: किया कछु न होए जिसमें ना ही तेरे किश काम
1: नानक जपे हर नाम
0: रूपवंत होए ना ही मोह
1: जो सगल कस होए
0: तरवंता होए क्या को गर्व
1: है।

0: रूप मंगल सत जाके
1: सर्व दुख सुनिए करता के
0: राज में राज जोग में जोगी
1: तप में तपिसर ग्रस्त में भोगी
0: ते आए भगत है सुख पाया
1: नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया।

0: साष्टपदी
1: चन्न सत सत परसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेखनहार
0: नाम सत सत त्यावनहार
1: आप सत सत सब धारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभु वक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: पूजन हार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभु सोए
1: सत स्वरूप हृदय जिन मान्या
0: करण करावन तिन मूल पछान्या
1: जाके हृदय विश्वास प्रभु आया
0: तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: है ते निरपौ होए बसाना
0: जिसते उग्या तिस माहे समाना
1: वास्त माहले वस्त गडाई
0: आको पिन न कहना जाई
1: बुझै बुझन हार विवेक
0: राई मिलवे नानक एक
1: ठाकर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकर के सेवक के मन प्रतीता
0: ठाकर के सेवक के निर्मल रीत
1: ठाकर को सेवक जान सांगा
0: ठाकर का सेवक

0: पास मित बिसारो
1: चरण कमल हृदय में उतारो
0: तन कर्ण कान सो प्रभु सम्राट हो
1: दृढ़ कर कहो नाम हरवत एतान संचो भगवंत।

0: जयन कमल राखहो मन माहे
1: जनम जनम के किल बिख जाहे
0: आप जप हो अवया नाम जपाव हो
1: सुनत कहत रहत गत पावो
0: सर पूत सत हर को नाओ
1: सहस भाय नानक गुण गाओ
0: गुण गावत तेरी उतर समैल
1: बिन जाए हमें बिख फैल
0: ओहे अचिंत बसे सुख नाल
1: सास ग्रास हर नाम संभाल
0: शाड
1: शाड से आनप सगले मना साध संग पावे सच तना
0: हर पूंजी सांच करहो व्यवहार
1: इया सुख दर गय जयकार
0: साहेब निरंतर एको दो
1: नानक जाके

0: परमा
1: आपन खेले आप वरतीजा
0: नानक करने आना दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल तनी
0: बंद मुकत को किसका गनी
1: जब एक हर अगम अपार
0: तब नरक सुरा को कान अवतार
1: जब नरगुण प्रभ सहज सुभाए
0: सिर सकत कहो कित ठाए
1: जब आप ही आप अपनी जोत धरे
0: कवन डर कवन का डरे
1: आपन जल तब करने हार
0: नानक ठाकुर अगम अपार
1: अनासी सुख अपने आसन
0: जन मरण को कहा विनाशन
1: जब पूर्ण कर प्रभ सोए
0: चमकी त्रास कहो किस होए
1: जब गोचर प्रभ एका
0: चित्र गुपत के पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन गोचर गादे
0: कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: अपने आप आप ही उचर जा
0: नानक अपन रूप आप ही उपर जा
1: निर्मल पुरख पुरख पात होता।

0: राम जप मन होत सुख
1: चिंता जाए मिटे हंकार
0: जन को कोई ना पहुंचे नार
1: हर ऊपर ठा डागर सूरा
0: नानक ताके कारज पूरा
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट
0: दर्शन पेख दूदरत श्रेष्ठ
1: चरण कमल जाके अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: सेवा सेवक परवान
0: अंदर जामी पुरख